0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने सलामती तआवुन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने का फैसला किया है। कम्बोडिया की वजारत दिफा में इतवार के रोज माहिदों पर दस्तखतों की तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें कम्बोडिया में जापान के सफीर उवेनो आसुशी और कम्बोडिया के वजीर दिफा टी ए साहा ने शिरकत की। ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी ओएसए फ्रेमवर्क दिफाई साजो सामान और दीगर मवाद की पेशकश करके हम ख्याल ममालिक के साथ सलामती तआवुन बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के तहत कम्बोडिया के लिए ये पहली फरामी होगी। जापान 500 मिलियन येन या तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के मवासलाती आलात और गश्ती कश्तियां फराहम करने का इरादा रखता है। जापानी हुकूमत ने फिलिपाइन को ओएसए प्रोग्राम के जरिए साहिली निगरानी के रेडार सिस्टम फराहम किए हैं। मार्च में उसने थाईलैंड को आफात के खिलाफ रद्द अमल और इमदाद व बचाव के आलात फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया था। कम्बोडिया मिलिट्री कम्युनिकेशन स्कूल कायम करने का इरादा रखता है और जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स के साथ तआवुन का भी मंसूबा बना रहा है। जापानी सफीर ने दस्तखत की तकरीब के बाद एनएचके को बताया कि उनका ख्याल है कि ओएसए के जरिए जापान और कम्बोडिया के दरमियान सलामती तआवुन एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कम्बोडिया के साथ तआवुन के ठोस तरीकों पर मुशावरत करना चाहेंगे। मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर के स्पेन और टॉप रैंक वाले अर्जेंटाइन के दरमियान मैच हुआ। मैच पर शुरू से ही स्पेन हावी रहा और दाएं जानिब से बार बार हमले किए। टीम की क्यादत 19 साल फॉरवर्ड लामीन या महल और मिडफील्डर रोड्री कर रहे थे। दोनों टीमों ने मजबूत दिफा का मुजाहरा किया जिसमें 90 मिनट का खेल बगैर किसी गोल के बराबर रहा और फैसले के लिए इजाफी वक्त दिया गया। मुतबादल के तौर पर खेल में शामिल होने वाले फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए फैसला कुन गोल करके इस तातुल को तोड़ दिया। स्पेन 4 टूर्नामेंट्स में पहली बार चैंपियन बना है जबकि अर्जेंटाइन मुसलसल टाइटल जीतने वाली तारीख की तीसरी मर्दों की टीम बनने में नाकाम रहा। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी को अपना खेल खेलने से रोकते हुए स्पेन ने फाइनल मैच के ज्यादातर वक्त पर अपना काबू रखा। मेसी ने 8 गोल के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फ्रांस के किल ए हान बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए। वो 2 बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपको है कि अक्वाम मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को जापान के कदीम दारुलहुकूमतों के आसार कदीमा मकामात और उनसे मुतल्लिका अमलाक को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करेगी। यूनेस्को ने इतवार को जनूबी कोरिया के शहर पुसान में अपनी आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास का आगाज किया। जापान की हुकूमत ने मगरबी प्रिफेक्चर नारा में वाकया आसुका और फुजीवारा के कदीम दारुलहुकूमतों को फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। आसारे कदीमा के ये मकामात 6वीं सदी के अवाखिर से 8वीं सदी के अवाइल तक के हैं। वो आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में हैं। कदीम दारुलहुकूमतों को शामिल करने या ना करने के बारे में बातचीत 24 और 27 जुलाई के दरमियान होनी है। गुज़श्ता माह यूनेस्को के एक मशावरती इदारे ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को आलमी सकाफती विरसा मकामात के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए और उन कदीम मकामात को 4 में से सबसे आला दर्जा दिया जाए। रजिस्टर होने की सूरत में ये मकामात जापान का 27वां आलमी सकाफती विरसा मकाम बन जाएंगे।
1: और अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान भर में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और मुल्क के कुछ मशरकी हिस्सों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि कांतो कोशिन और तोकाई इलाकों में बारिश का मौसम बज़ाहिर खत्म हो गया है। हुकाम ने कई इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئی چی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور ابراقی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا. اور امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف کاروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کا مسلسل 9واں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار رات 10 بجے ختم ہوا. اور حکومت جاپان نے سلامتی تعاون کے اپنے فریم ورک کے تحت کمبوڈیا کو دفاعی ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں.

0: ごめん、遅くなって。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
2: काइटो टॉम को फोन करता है।
0: मोशी-मोशी, टॉम-सान।
1: हेलो, टॉम-सान।
0: इमा दोको नी इरु नो?
1: अभी आप कहाँ हैं?
2: टॉम जवाब देती है।
3: टोकेदाई नो नका नी इमास।
1: घंटाघर के अंदर हूँ।
2: काइटो कुछ हैरत से कहता है।
0: ए, नका?
1: अरे, अंदर?
2: फिर वो टॉम से कहता है।
0: जा, बोकु मो सुगु सोच्ची नी इकु ने?
1: तो फिर मैं भी फौरन उधर पहुँचता हूँ।
2: टॉम जवाबन कहती है।
3: वकारिमास्ता।
1: ठीक है।
2: कुछ देर में काइटो टावर के अंदर आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाता है। मिया उसे देख लेती है और उसे मुखातिब करती है।
3: आ, काइटो।
1: अरे काइटो।
3: कोच्ची कोच्ची।
1: इधर इधर।
2: काइटो फौरन उनके करीब पहुंचता है और कहता है।
0: गोमें, ओसोकु नत्ते।
1: माजरत, मुझे देर हो गई।
2: चले, अच्छा हुआ इन्होंने जल्द एक दूसरे को ढूंढ लिया।
1: घंटाघर सफेद रंग की दो मंजिला चौबी इमारत है। बड़ी घड़ी उसकी सुर्ख छत पर नस्ब है। ये घंटाघर 1878 में तामीर किया गया था।
2: तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
4: मोशी-मोशी, टॉम-सान, इमा दोको नी इरु नो?
3: टोकेदाई नो नका नी इमास।
4: ए, नका? जा, बोकु मो सुगु सोच्ची नी इकु ने?
3: वकारिमाश्ता। आ, काइटो, कोच्ची कोच्ची।
0: ごめん、遅くなって。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है घंटा घर के अंदर हूँ।
3: टोकेदाई नो नका नी इमास।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी का मकाम बता सकते हैं।
1: टोकेदाई के मायने है घंटा घर और नाका यानी अंदर। चुनांचे टोकेदाई नो नाका का मतलब हुआ घंटा घर के अंदर। नी मकाम के साथ इस्तेमाल होने वाला हर्फ जार है और इमस फेल इरु यानी मौजूद होना की मस शक्ल है। आज का नुक्ता, अपनी या किसी और की कहीं मौजूदगी बताने के लिए फेल इमस इस्तेमाल किया जाता है।
2: गुज़िश्ता सबक में इसी मायने में फेल अरिमस इस्तेमाल किया गया था, तो इमस इससे किस तरह मुख्तलिफ है?
1: इमस बुनियादी तौर पर इंसानों या दीगर जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेजान अशिया की मौजूदगी जाहिर करने के लिए फेल अरिमस इस्तेमाल होता है।
2: अच्छा, जानदार और बेजान का फर्क, ठीक है, मैं समझ गई।
1: किसी को अपनी मौजूदगी का मकाम बताने के लिए उस जगह के नाम के बाद हर्फ जार नी लगाएं और आखिर में फेल इमस। मजीद वजाहत के लिए किसी मशहूर मकाम का हवाला देना बेहतर होगा, जैसा कि आज के कलीदी जुमले में है। टोकेदाई नो नका नी इमस, यानी घंटा घर के अंदर हूँ। इस जुमले में अल्फाज की तरतीब यूँ होगी, पहले मशहूर मकाम का नाम, फिर हर्फ जार नो, फिर मशहूर मकाम के हवाले से अपनी जगह, मसलन अंदर, सामने, दाएं, बाएं वगैरह, और आखिर में नी इमस।
2: कलीदी जुमले में मशहूर मकाम टोकेदाई यानी घंटा घर और उसके हवाले से अपनी जगह नका यानी अंदर, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक।
2: तो सामीन अब सुनिए और दोहराइए।
5: टोकेदाई नो नका नी इमस। टोकेदाई नो नका नी इमस।
2: जी सामीन, यकीनन आपने उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: और अब फोन पर होने वाला एक मकालमा सुनिए। एक शख्स मुखातिब को अपनी मौजूदगी के मकाम के बारे में बता रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
1: और अब मकालमे की तशरी।
6: इमा दोको नी इमास का?
2: अभी आप कहाँ हैं?
1: इमा के मायने हैं अभी या इस वक्त, और दोको नी इमास का यानी कहाँ हैं। लफ्ज दोको यानी कहाँ आप पहले सीख चुके हैं।
6: काइसात्सु नो माए नी इमास।
2: टिकट गेट के सामने हूँ।
1: काइसात्सु रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं और माए यानी सामने। चुनांचे काइसात्सु नो माए नी का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
2: अब सुनिए और दोहराइए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्सु नो माए नी इमास। काइसात्सु नो माए नी इमास।
1: अब कुछ और मकामात के साथ मश्क करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
5: कोम्बिनी। कोम्बिनी।
1: और अंदर को नाका। तो सामीन कोशिश करें

0: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
1: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं तो ये बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादिल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है।
2: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन।
1: और बराबर में को कहते हैं
2: योको, योको।
1: जी सामीन, कोशिश करें।
3: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास। इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास।
4: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर कैतो से कहा था। इसे इसी तरह याद कर लें।
5: वकारीमाश्ता।
1: वकारीमाश्ता के मायने है ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
4: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: वकारीमाश्ता।
7: वकारीमाश्ता।
4: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: वकारीमाश्ता।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।
8: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
8: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
4: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की कन्वीनियंस स्टोर्स।
1: इरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
4: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
1: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियां और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
4: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
1: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें नस्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।